0: भाई जब जाता मत तमा
1: उनका जंतु
0: मगर की उनका चेन पूरा ही एक्सपो एक्सपो ताने बुचन्ना की जो ले
1: ओहो लिया लिखे रे
0: दिल दिया फील करें एफएम 90.4